पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले बिहानको 9 बजे।

पाखरीबास एफएम समय सूचक यो पाखरीबास एफएम को समय हो अहिले साँझ 6 बज्यो।

0: के भरे
1: भटभटिया खोइ
0: भटभटिया
2: साथी साथी हुँदैन ए बुट खर्चेल हामीलाई बाइक हुनुपर्छ हामी सिन्दुर हाल्दैन ए सिन्दुर नहाल पर्दैन।